मेरे प्रभु को कृपा आई रहाओ, अंतर जामी सब मैं वरतै तापो कैसा पाई, संग सहाई छोट ना जाई, प्रभु दी सह सबनी ठाई, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जी वह दास तेरे, नानक प्रभ सरनाई, मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोहयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, नाम महारस पीजै, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा की जय, कर गए ले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभु को भगत वचन बिरदायो, निंद कुमार चरण तल दीने, अपने जस वरतायो रहाओ, जय जयकार कीनो सब जग मैं, दया जियन मैं पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाओ न लायो, अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दीसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणिया विस्थार, गुरमुख नाद बेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार, मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसरे हर हृदय वस्यो, सास ग्रास अपना खसम त्याई है रहाओ, गुर के चरण मिटो बल जाओ, गुर के गुण अंदनित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाईए मान, गुर बोएथ पव जल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कौ कर्म लिखिया तुर आए, गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई। मलार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेवको ले प्रभ लाए, ता की कीमत कही ना जाए, कर कृपा पूर्ण सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवै, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ, गावन सुन सब तेरा पहाना, हुक्म बूझै सो साज समाणा, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणे बख्स पाणे दे सजाए, दुहा सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने, सेई भगत जो तुद पाने, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवा, परमेसर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत तृपतासे, कार्य आए पूरे रासे, सदा सदा मन नाम संभाल, गुर पूरे की सेवा पाया, ऐथे उथे निभै नाल रहाओ, दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जिया की कीती सार, रखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करता आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुरसरनाई सगल निदान, साची दरगह पाईए मान, ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ, सतगुर जेवड़े अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेसर सोए।
जन्म मरण दुख ते राखै, माया बिख फिर बहुन न चाखै। गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर सच नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संगराची। गुर पूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवासे, कर कृपा गुर चरण निवास। नानक की प्रभ सच अरदास, राग मलार महला पंजवां। पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंकिया किनोरी सगल सिंगार। तजोरी सगल बेकार, ताव तो अस्थिर थिया रहाओ। ऐसे रे मन पाए कै, आप गवाए कै। कर साधन स्यों संग, बाजे बजे मृदंग। अनाहद को कलरी, राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया। ऐसी तेरे दर्शन की सोभ, आत्या पार प्रया मोग। तैसे ही संग संत बने, पाव उतार नाम पने। राम राम राम माल, मन फेरते हर संग संगिया। जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने। उमकत रस चाले, प्रम मिलबे की चाह रहाओ। त्रै गुण माई मोह आई, कहो बेदन काहे। आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रे की सोभ सुहावनी निकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत, बहुबिध रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवां, गुरप्रीत प्यारे। चरण कमल हृदय अंतर तारे, रहाओ दर्स सफल्यो दर्स पेख्यो। गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसम बिसम पही, अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही। भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा, बरस सरस आग्या, होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै, मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह, त्याग माया तोह। मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा, गुण गोपाल गाओ नीत। राम नाम तार चीत रहाओ, छोड़ मान तज गुमान। मिल साधुआ कै संग, हर सिमर एक रंग। मिट जाहे दुख मीत, पार ब्रह्म पहे दयाल। बिनस गए बिखै जंजाल, साध जना कै चरण लाग। नानक गावै गोविंद नीत, मलार महला पंजवा। कान गर्जत गोविंद रूप, गुण गावत सुख चैन रहाओ। हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर, आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक, कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल रहाओ। प्राण नाथ नाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण, मोहे मया तार। अंधकूप महापयान, नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे, बिन पिर नींद ना पाई। सूर चरै प्रियो देखै नैनी,
निव निव लागै पाई, फिर भावै प्रेम सिखाई, तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ। सरवर कमल किरण आकाशी, बिकसै सहि सुभाई, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो ओटेरे, बिलप करे बिल लाई, कन हर कोर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खेन तिल रह न सकै पल जन बिन, मरण जीवन तिस्ताई। तन वांडी पिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभृदय निवासी, भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती, गुर पावै प्रयो पाई, प्रयो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेर मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई, घट घट रहा समाई, गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया, सहजे सहि समाई। अपना काज सवारो आपे, सुखदाते गोसाई, गुर प्रसाद कर ही पिरपाया, तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच ढर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे, हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे, राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सर्यवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी, आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा, काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चतराई, नानी सी बूंद पवन पत खोवै, जन मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहां कर तरवर, सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी, मन तन हेम पय सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै, तू सर्ब जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो, साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै, बदक कर्म कमावै, सतगुर मिलै ता सूजस बूजस, सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची, निर्गुण देहे साच बिन काची, मैं पूछो गुरे अपना, नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै, सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ, प्रे स्यों प्रीत ना उल्टै कबहू, जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा, पीवा नाम सुभाई, लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रे बिन सिंगार करी, तेता तन तापै, कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकाओ, बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी, सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली

सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंज सह दाना खाए, डकै फूकै केहे उड़ावै, साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी, खस मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल्लाए। खसमै भावै ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सकता सीहो मारे सह मेरे आ, सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरै न मावै, साहे गए पछताए। अंधा किसनो बुख सुनावै, खसमै मूल ना पावै, अग स्यो प्रीत करे अक तिड्डा, अग डाली बै खाए। खसमै पावै ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीतै दुख होई।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जा को भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड उचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रवला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहुत।

हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो किरपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै भज हर हर नाम निधान। उसत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान। जिनकै हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर तू।

तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय तरना, तुमरो बल तुम संग सोहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल ता पौजल तरना, अपैदान नाम हर पायो, सिर डार्यो नानक संत चरना, कानड़ा महला पंजवा, साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी पेकी सुपना, नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ, नह त्रिपतानो राजोबंतान, बहुर बहुर फिरताया, सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांत पाई गुन गाया, बिन बुझे पशु की न्याई, ब्रह्मो व्याप्यो माया, साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहित समाया, कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख सांत मूर्त, सिमर सिमर नित्य आए रहाओ, सगल आस होत पूर्ण, कोट जन्म दुख जाए, पुन दान अनेक किरिया, साधु संग समाए, ताप संताप मिटे नानक, बहुड़ काल ना खाए, कानड़ा महला पंजवा, करती जा एको अंकार, सतगुर प्रसाद कथिय संत संग प्रभ ज्ञान, पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाई है मान रहाओ, आवत जात रहे श्रमनासे, सिमरत साधु संग, पतित पुनीत होए खिन पीतर, पार ब्रह्म कह रंग, जो जो कथ है सुने हर कीर्तन, ताकि दुर्मत नास, सगल मनोरथ पावे नानक, पूर्ण होवे आस, कानड़ा महला पंजवा, साध संगत निधार को नाम, संग सहाई जी के काम रहाओ, संत रेण नित मज्जन करै, जन्म जन्म के किल बिखरै, संत जना की उच्ची बानी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी, कानड़ा महला पंजवा, साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रहाओ, ईत ऊत कहां लोभावे, एक सिओ मन लाए, महा पवित्र संत आसन, मिल संग गोबिंद आए, सगल त्याग सरने आयो, नानक लेहो मिलाए, कानड़ा महला पंजवा, पेख पेख बिकसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रहाओ, आनंदा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही पात, सिमर एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जात, गुण रमंत दुख नासै, रिद पयंत सांत, अमृता रस पियो रसना, नानक हर रंग रात, कानड़ा महला पंजवा, साजना संत आओ मेरा रहाओ, आनंदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाहे परेरा, संत चरण तरो माथे, चांदना ग्रे होए अंधेरा, संत प्रसाद कमल बिगसै, गोविंद पजो पेख नेरा, प्रभ कृपा ते संत पाए, वार वार नानक ओह बेरै, कानड़ा महला पंजवा, चरण सरन गोपाल तेरी, मोह मान तोह परम, राख लीजै कठ बेरी रहाओ, बूढ़त संसार सागर, उदरे हर सिमरत नागर, शीतला हर नाम तेरा, पूर्णो ठाकर प्रभ मेरा, दीन दर्द निवार तारण, हर कृपा निद पथ तो धारण, कोट जन्म दुख कर पायो, सुखी नान गुरनाम दृढ़ायो, कानड़ा महला पंजवा, ताने हो प्रीत चरण संग लागी, कोट जाप ताप सुख पाए, आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ, मोह अनाथ दाह जन तेरा, और ओढ़ सगली मोह त्यागी, पोर परम काटे प्रभ सिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोभत जागी, तू अथाहो अत बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रतनागी, नानक जाचक हर हर नाम मांगे, मस्तक तार मस्तक आन तरयो प्रपागी, कानड़ा महला पंजवा, कुचल कठोर कपट कामी, ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रहाओ, तू समरत सरण योग तू राखे अपनी कल तार, जाप ताप नेम सोच संयम, नाही इन विदे छुटकार, गर्त कोर अंध ते काडो, प्रभ नानक नदर निहार, कानड़ा महला पंजवा, कर चौथा एको अंकार, सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे रहाओ, कवन कवन कवन गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारे,
लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचार विषम विषम विषम ही पही है लाल गुलाल रंगार कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गुंगा मुस्कार कानड़ा महला पंजवा ना जानी संतन प्रब ने आन ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ घट घट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनै प्रगास भयो भ्रम नास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे करतग करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावै मांगन कौ हरदान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कौ कई केत ऐसो जन।

बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता है, सोग नहीं सदा हर की है रे, छोड़ नहीं किस लेता है। कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमत है, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत पए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाला।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ, बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खा टंगा, दर्शन भेटे बिन सत संगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा, हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा, सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूज गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ, जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराऊं, हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए, त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो, जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए, एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवां, कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्यागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल, हां हां मन चरण रेन रहाओ, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान, ताज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन, गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ, तटन खटन जटन होमन, नाही दंड धार सुवाओ, जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं था पाई ठाओ, सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतत पावन भगत पवचल, पै हरन तारन तरन रहाओ, नैन तिपते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन, प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन, आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरण दयाल ठाकर, आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी, उधरते हर त्याए रहाओ, संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध, बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो, राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन, कोट पाप विनाश, मन दर्शन की प्यास, प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक, हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो, सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ, कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इनस्यों तात, मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सू

प्रेप्रीत प्यारो मोरो रहाओ, गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो, पंच दूतन स्यो संग तोरो, आए ना जाए बसे निज आसन, ऊंद कमल बिग सोरो, छुटकी हम मैं सोरो, गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो, कनड़ा महला पंजवा करनावा, ता ते जाप मना हर जाप, जो संत बेद कहत पंथ गाखरो, मोह मगन अहंताप रहाओ, जो राते माते संग बपरी, माया मोह संताप, नाम जपत सौ जन उदर, जिसे उधारो आप, बिनस जाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवा कर दसवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलिहार, मान मोही पंच दोखी, उर्ज निकट बसेओ, ताकी सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ, कोट जन्म जोन प्रमेओ, हार पर्यो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दुलाभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सह सुभाए अपने आए, कशु ना जानो कशु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करै बसाए, गुण निधान प्रगट्यो ए चोलै, चरण लुभाए अंत जाए, थान थनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकर मिलन दुराई, परमित रूपा गामा गोचर, रहो सर्व समाई रहाओ, कहन पवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक्यो पावरे, तव मिलियो जौ कृपाई, प्रभु दयार कृपाल कृपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवा, माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवो चरनार बिंद सासन निस्पोर रहाओ, लाए प्रीत कीन अपन टूटत नहीं जोर, प्राण मन तन सर्ब सो हर गुण दे सुख मोर, ईत ऊत राम पूर्ण निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक बिरस्यो दुख कोर, कानड़ा महला पंजवा, जन को प्रभ संगे असने हो, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरे सबके हो रहाओ, मान मांगो तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत देह, मुकत जुगत भुगत पूर्ण, परमानंद परम निधान, पै पाए भगत निहाल नानक, सदा सदा कुर्बान, कानड़ा महला पंजवा, करत करत चर्च चर्च अहं चरी, करत करत चर्च चर्च चरचरी, जोग ध्यान पेख ज्ञान, फिरत फिरत तरत तरत तरचरी, रहाओ अहं अहं अह अवर मूड मूड मूड बवरई, जत जात जात जात सदा सदा सदा काल है, मान मान मान त्याग, मृत मृत निकट निकट सदा है, हर हरे हरे पाज, कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई, कानड़ा अष्टपदियां महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन राम नाम सुख पावै गो, ज्यो ज्यो जपै तवै सुख पावै, सतगुर सेव समावै गो रहाओ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावै गो, अनरस साध गए सब निकर, बिन नामै किशना सुखावै गो, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बजन कढ़ावै गो, सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्म, बाणी सो चितलावै गो, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज करे।

कर कृपा मिले परमानंदा प्रभ मिले स्वामी सुखैगामी इच्छा इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बहुत दुख न रुनिया ले कंठ लाए सुख दे कहाए।

अन जम्या खेती पाओ कर, हर नाम समारे जन नानक मंगे दान प्रभ, हर नाम आधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है, जपिए सुख सागर हर के चरण आराधी है, गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार होए, फाटे जमकागर जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर सब पवो शरण सदगुरु की, बिनसै दुख दागर श्लोक महला चौथा, हाँ टूडेंदी सजना सज्जन मंड नाल, जन नानक लख ना लखी है गुरमुख दे देखाल, महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन सच्चै तिस बिन रहन ना जाई, सतगुर मिले ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई पौड़ी, कोई गावे को सुने को चुर सुनावे, जन्म जन्म की मल उतर मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है हर के गुण गावे, आप तरह संगीत राहे सब कुटंब तरावे, जन नानक तिस बलिहारण है, जो मेरे हर प्रभाव है सुध, राह कान ला बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ, बसै कटा कट लीप ना शीपै, बंधन मुक्ता जात ना दिसै, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठ ले ऐसा, राह कल्याण महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद, रामा राम राम मैं अंतना पाया, हम बारक प्रतपारे तुमरे, तू बट पुरख पिता मेरा माया रहा हो, हर के नाम असंख अगम है, आगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत बहुकीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया, गोबिंद गुण गोबिंद सद गावे, गुण गोबिंद अंत ना पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिय था ना पाया, उस्त करे तुमरी जन मादो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहू पाया, जन कहो कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया रहाओ, गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीर्त जग सारी, कस चंदन जस कसिया, हर जन हर हर हर लिवलाई, सब साक्त खोज पया, जो किरत संजोग चलियो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया, कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर चर परिया, जेते जी जंत प्रभ किए, सब काल है मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे, जन नानक शरण पया, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे, गुर उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल विख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसन थे, बार बार खिन पल सब गावै, गुण कह ना सकै।

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड़ कंचन करत रीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जनी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों करता अंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साक्त संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम्मन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जियां देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बहदे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा, उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरे हर प्रभ लब्बा रहाओ। राम नाम रस राम रसायण, रस पिया गुरमत रसबा। लोह मनूर कंचन मेर संगत, हर उर तारियो गुर हरबा। हम मैं बिखिया नित लोभ लुभाने, पुत कलत मोहे लुभबा। तिन पग संतन सेवे कभू, ते मनमुख पूंबर परबा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो, हम परे हार तुम सरन बा। ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवा शकायक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान, हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान, सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विभास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा तरत बर्तन कौ पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत, सो हर सेवो नीता नीत। तहां सिखाई जै कोई ना होवै, कोट अपराध एक खिन में तोवै। दात करे नहीं पछोतावै, एका बख्श फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा। प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा। नाम तेरा जन कै पंडार, गुण गावे प्रभ दर्स प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई, काड़ जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन, पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै न जाए, अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा। गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय, हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया। हलत पलत जिन गुरै सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वड्डे पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारक सरन प्रभ दयाल,
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसे खिन पीतर पय कृपाल गुसाई सासा स्पार ब्रह्म आराधी अपने सतगुर कै बल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाईऐ लाहा खाट हुई तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिख सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सोभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोग सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम स्यों लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेश ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बन जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई वडभागी जिस मिलते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवां कर कृपा अपने प्रभ की हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरणी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यो लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यो मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निद गाई है कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवां से धनवंत से ही सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाईए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार प्रभाती महला पंजवां गुरपुरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब ता का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुर प्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपुरे अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपुरे प्रभ स्यो लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नान गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवां सतगुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ सूड सुजान गुरपुरा पाईए वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग साध संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੇ ਆਚਾਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵੇਂ, ਲਖ 84 ਜੋਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਈਹਾਂ ਉਹਾਂ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਧਰਿਆ ਹਾਥ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸ। ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਨੇ ਰਹਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਰਸ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਕੀ ਨਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਇਆ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਮਨ ਬੂਠੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਸ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਓ, ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਉ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਲਿਆਣ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਾਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਨੀਤ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਸੈ, ਲੱਗੈ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਪਾਗੈ, ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੈ ਜਮਨਾ ਤੇਟੈ, ਜਿਸ ਤੁਰ ਹੋਵੈ ਸੰਜੋਗ। ਰੈਣ ਦਿਨ ਸਤਿਆਏ ਹਰ ਹਰ, ਤਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸੈ ਪੂਰਨ ਕਰਮ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਬਿਖਾਦ ਬਿਨਸੇ, ਰਾਖ ਲੀਨੇ ਆਪ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੀਤ ਭਾਈ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋ ਮੋਹ ਬਿਰਸ ਜਾਏ ਅਹੰਤਾਪ। ਰਹਾਓ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਸੰਤ ਚਰਨ ਲਾਗ। ਮਨ ਪਵਿੱਤ ਜਾਹੇ ਪਾਪ, ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨਾ ਲਾਗ ਜਾਣੈ। ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਈ ਬਾਪ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਟੇਕ, ਊਚ ਮੂਚ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕਰ। ਸਰਬ ਉੱਪਰ ਤੁਹੀ ਏਕ ਰਹਾਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿਧਾਰ। ਦੈਨ ਹਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਨਮਸਕਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। ਮਨ ਆਰਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਕ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਰੋ ਮੱਜਨ। ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਅਨੇਕ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਵਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਲਿਪਟ ਰਹੀ ਫੁਨ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ। ਨਾ ਮਨ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਰੈ, ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੈ ਰਹਾਓ। ਮਾਇਆ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪਿਆਰੀ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਬਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਜਿਉ ਮਨ ਦੇਖੈ ਪਰ ਮਨ ਤੈਸਾ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸਾ। ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਤੈਸੀ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਵੈ। ਰਾਗ ਨਾਥ ਮਨ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੈ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਨਿਕਰਵਾ ਸਿਮਰ ਪਦ ਪਾਵੈ, ਤਾਂਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੈ ਜੇ ਕੋਈ। ਹਮੈ ਮੇਰਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਈ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ। ਸ਼ਬਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਔਰ ਧਾਰ, ਸ਼ਬਦੇ ਗਤ ਮਤ ਮੁਖ ਦੁਆਰ।
ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੋ, ਸਾਚਾ ਆਪ ਅਨੂਪਿਆ ਪਾਰੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਤਮ ਗਤ ਹੋਈ, ਨਨ ਖੋਜ ਲਹਿ ਜਨ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇ ਕਾਮ ਲੋਭ ਆਇਆ। ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸੋ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਐਸਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ

नामन वसाए बेसम बिनोद रहे परमादी गुरमत मान्या एक लिव लागी देख निवारिया जल मैं आगी सोबू जय हो वै वडभागी सतगुर सेवे परम चुकाए अंदर जागे सच लिव लाए एको जाने अवर ना कोए सुखदाता सेवे निर्मल होए सेवा सुरत शब्द विचार जप तप संजम हो मैं मार जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए सच्ची रहत सच्चा सुख पाए सुखदाता दुख मिटन हारा अवर ना सू जिस बीजी कारा तन मन तन हरे आगे राखिया नानक कह महारस चाखिया प्रभाती महला पहला निवली कर्म भयंगम पाठी रेचक पूरक कुंभ कर बिन सतगुर के सोजी नाही परमे पूला बूड मर अंधा परया पर धोवे अंतर की मल कदे नाल है ना बिना फोकट सब कर्मा ज्यो बाजी गर परम पुल खट कर्म नाम निरंजन सोई तू गुण सागर अब गुण मोही रहाओ माया तंदा तावणी दुर्मतकार बेकार मूर्ख आप गणाएंदा बूझ न सकै कार मरसा माया मोहनी मनमुख बोल खुवार मज्जन झूठा चंडाल का फोकट चार सिंगार झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद झूठे विच अहंकरण है खसम ना पावे साध बिन नामे होर कमावना फिका आवे साध दुष्टी सभा विगुची है बिखवाती जीवन बाद ए परम पूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुखोई बिन सतगुर मुक्त कने ना पाई आवे जाहे मरे मर जाई एहो शरीर है त्रैगुण धात इसनो व्यापै शोक संताप सो सेवहो जिस माई ना बाप विचों चूकै तिसना आर्याप जै जै देखा तै तै सोई बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई हिरदै सच है करनी सार होर सब पाखंड पूज खुवार दुबदा चूकै ता शब्द पछाण कर बाहर एको कर जाण एका मत शब्द है सार विच दुबदा माथ है पवै शार करनी कीरत गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवत मर जाण नानक नदरी नदर पछाण प्रभाती महला पहला दखनी गौतम तपा अहिल्या स्त्री तिस देख इंद्र लोभ आया सहस शरीर चिहन पग हुए तामन पछोताया कोई जान न पूले पाई सो पूले जिसया पुलाए बुझे जिसे बुझाई रहाओ तिन हरिचंद प्रथमी पत राजा कागद कीम ना पाई अवगण जाने ता पुन करे क्यों क्यों ने खास बिकाई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहान है क्यों पयाल जाए क्यों शली है जेबल रूप पछान है राजा जनमेजा दे मती बर्ज प्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाणा बोली पाए सुबाई जो किश वरतै तुदै सलाही सब तेरी वड़ियाई गुरमुख लिप तो लेप कदे ना लागे सदा रह सरनाई मनमुख मुख दिया गै चेतै नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचिए हर अवमान न जाई जियो अवमाने पै पचिए भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद या कुल्लै

आखण सुनना नाम आधार, तंदा छुट गया बेकार। ज्यो मनमुख दूजे पत खोई, बिन नावे मैं अवर ना कोई। सुन मन अंधे मूर्ख गवार, आवत जा तो लाज नहीं लागे। बिन गुर बूढ़े बारो बार रहाओ, इस मन माया मोहे विनाश। तोरो हुक्म लिखिया ता कही है कास, गुरमुख विरला चीने कोई। ना बेहूना मुक्त ना होई, प्रम प्रम डोले लख चौरासी। बिन गुर बूझे जमकी फासी, एहो मनुआ खिरखनी उपयाल। गुरमुख छूटे नाम समाल, आपे सदे ढिल ना होए। शब्द मरै सहला जीवै सोए, बिन गुर सोजी किसै ना होए। आपे करै करावै सोए, झगड़ चुकावै हर गुण गावै। पूरा सतगुर सही समावै, एहो मन डोलत तौ ठहरावै। सच करनी कर कार कमावै, अंतर जूठा क्यों सोच होए। सबदी धोवै विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावै। आवन जाना ठाक रहावै, पौ खाना पीना सुखसार। हर जन संगत पावै पार, सच बोलै बोलावै प्यार। गुर का शब्द करनी है सार, हर जस कर्म धर्म पत पूजा। काम क्रोध अग्नि में पूंजा, हर रस चाखिया तौ मन पीजा। प्रणवत नानक अवरना दूजा, प्रभाती महला पहला। राम नाम जप यंत्र पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा। एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई। रहाओ मन तन आगे, जियड़ा तुद पास। जो पावे तो रखो अरदास, सच जेहवा हर रसन रसाई। गुरमत छूटस प्रभ सरनाई, कर्म धर्म प्रभ मेरे किए। नाम वडाई सिर कर्मा किए, सतगुर कह वह चार पदार्थ। तीन समाए एक कृतार्थ, सतगुर दिए मुक्त ध्याना। हर पाचीन पय परदाना, मन तन शीतल गुरबूझ बुझाई। प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरबूझ बुझाई। नाम बिना गत किने ना पाई, प्रभाती महला पहला। एक तुर बख्श लय गुरपूरै, सच्ची बणत मनाई। हर अंगरा ते सदा रंग साचा, दुख विसरे पथ पाई। झूठी दुरमत की चतराई, बिरसत बार न लागे काई। रहाओ मानमुख कहो दुख दर्द व्यापस, मानमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लय सरनाई। मानमुख ते अब भगत ना होवस, हम मैं पचै देवाने। एहो मनुआ खिनी उपयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग पया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाए। सहजे सहज मिलै सुख पाई, दरगह पैंदा जाए। दरगह दाना बीना एक आपे, निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझै पर निर्वाणी। जल तरंग अग्नि पवन फुन, त्रैमल जग त्यो पाया। ऐसा बल छल तिन को दिया, हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जान विरले जग अंदर, पर खजाना पाया। जात वर्ण ते पय अतीता, ममता लोभ चुकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल, दुख हम मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखल, जिन्ना गुरमुख साचा पाया। प्रभाती महला तीजा, विवास एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गुर प्रसादी वेख तू, हर मंदिर तेरे नाल। हर मंदिर शब्द खोजी, हर नामो लिहो समाल। मन मेरे शब्द रपै रंग होए, सच्ची भगत सच्चा हर मंदिर। प्रगटी साची सोए, रहाओ हर मंदिर एहो शरीर है। ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी। मानस हर मंदिर ना होए, हर मंदिर हर जियो साजिया। रखिया हुक्म सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना। कोई ना मेटन हार, शब्द चीन सुख पाया। सच्चा नाए प्यार, हर मंदिर शब्दे सोहना। कंचन कोटिया पार, हर मंदिर एहो जगत है। गुरबिन कोरे अंधार,
ਦੂਜਾ

दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या त्रि देव देवा कर अदपत याद सुमाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई। ठांडा बर्मा निगम विचार है अलख ना लखया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती। दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया। बूझे बूझनहारा पंचे शब्द अनाहद बाजे। संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी प्रभाती बाणी भगत नाम देव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की व्यर्था मन ही जाने कह बूझ लिया गै कहिए। अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए। बेदियले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवया सर बेठाई। रहाओ मन है हाट मन है पाट मन है पासारी। मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सहि समाणी। सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपौ समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म ताची अवगत बाणी। नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत न जानिया। सर्ब निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया। रहाओ बावन बिखू बानै बिखे वास्ते सुख लागला। सर्ब आद परमलाद काहट चंदन पैलै। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पैला। तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई तै मैं किया सो मालूम होई। रहाओ ज्यो प्रगासिया माटी कुंभे ओ आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म व्यापै जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लहै। अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तलकाती। ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च राम क्रूर दिष्ट रता निस्बादं। रहाओ नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग। हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागत निस जागस भगत परवेशं। पग नाचस चित अकर्मं एलम पट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नवा। राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। रहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान। बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिन सजह है तेरो गात।
छिन छिन कर गयो कालो तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है। रहाओ सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यों बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन सिंह अत लुभान मत नान फेरी। रहाओ मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहो परी बेरी। नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी। जय जावंती महला नावा बीत जय है बीत जय है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तो पहुंचो आन कहा जह पाजरे। रहाओ अस्थिर जो मान्यो

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते। सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान पंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन। सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाह तन्यमृता आवद गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण। आरूढ़ ते अश्वरथ नाग बुजंते प्रमार गै विचरते निर्भयंग सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन। जित ते विश्व संसार नानक वस्यंग क्रोत पै तस्कर। मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निदान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठंग नह चंचल चतर चतर। पाग उद्यम लभद्यंग माया नानक साह संग खल पंडित। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी। गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन। कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण। कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन। नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन। नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर। नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलास। नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल। दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग। जत कतै ततै दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणंग गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्यते। बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन। दुखंग पयंत सुखयंग पै पी पंत निर्भय। थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुरै। सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन। सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते। नह शीतलंग चंद्र देव नह शीतलंग बामन चंदन। नह शीतलंग शीतरुतेण नानक शीतलंग सास्वजन। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण। ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण। दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित। भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित। उपदेशंग समित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी। पर निंदा न स्रोत श्रवणंग आप त्याग सगल रेण कै। खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन। अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर। तत्रगते संसार नानक सोग हरखंग व्यापते। छलंग शिद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बिखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग। मृत्यो जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते। निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग। अरमंत गुण गोविंद नित प्रत।
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतंग सोगहरखंग पै खीणंत निर्भव पै अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग, हे अजित सूर संग्रामंग अत बल ना बो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यंग पशपंखी बेमोहन है, हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी परमावण है, चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है, तव पै बिमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधंग कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवंग वस्यंग क्रोत निरत्यंग क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तव संगे अदमंग नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं, अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाज्यंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रंग दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण है, वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन है, सास संगेन तरणंग नानक महासागर पैदुत्तर है, सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मंग हस्त काया रख्या परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियंग सासंग शरीर तारणंग, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैछ जंत जठर रोगण तेन कला अस्थम्बंग सरोवरंग नानक नहश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणंग सर्वत्र जीवन लब्ध्यंग संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतण, मस्कंग पगनंत सैलंग कर्दमंग तरंत पपील कै सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणंग जथा विपरा अमरहीणंग जथा राजन आवदहीणंग जथा सूरा, नानक धर्महीणंग तथा वैष्णव है, न शंखंग न चक्रंग न गदा न श्यामंग आश्चर्य रूपंग अरहंत जन्मंग, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयंग अचत बुझंत नानक वडभागी है, उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खर है, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणंग अहू फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन है,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖ ਅੰਗ ਹਿਰਦਿਅੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸਮੰਤ ਸਵਜਨ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤ ਇਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਗ ਤਾ ਮੇਰੰਗ ਸਹਿਕੰਗ ਤਾ ਹਰਿਯੰ ਬੂਡੰਗ ਤਾ ਤਰਿਯੰ ਊਣੰਗ ਤਾ ਭਰਿਯੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣੈ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਓ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੁ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤ ਕਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰ ਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣੈ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣੈ ਅਰਹੰਤਾ ਜਨ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣੈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣੈ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰਗ ਬਣ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਲਬਧੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੈ ਸਿਮਰਤਾ ਬਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੈ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवनंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहोन पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याद्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणंग सरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुलै समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग सिमरणंग गोविंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं सुखैन बैन रत्नं रचनं कुसुम्बरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया सोलै किए सिंगार के अंजन पाजिया जे कर आवे कंत ता सब कुछ पाई है हर हा कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागने तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागने हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पय दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पय दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर दे पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जे सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां
नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए, जे संग लागे प्राण तिसै को वाही है। बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे, हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे। मित का चेता नूब मराम ना जानी है, गाहक गुनिया पार सो तत् पछानी है। चितै चित समाए ता होवै रंग घना, हर हां चंचल चोरै मार ता पावै सचतना। सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला, सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला। खोजो ताके चरण कहो कत पाई है, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है। नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया, करन ना सुन ही नाद करन मुंद कालिया। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटी है, हर हां जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटी है। पंकज फाथे पंक महामद गुम्फेया, अंग संग उर जाए बिसरते।

बाद समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम ना बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यों जिन मन नाही।

करते हुए सो होए। कबीर बैसनों की कुकर भली, सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला, एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी, चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले, दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरे, चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो, जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चढ़िया टा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कनी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो साला ही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औद पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तोहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परे ही ते परे अपरे अपार पर, आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार, उपत पर लो एक है निमख तो कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्वगुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान, कौन उपमा देओ बड़े ते बडान, जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी, जा कहो हे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए, दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेह जन तृप्तिया गाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार, हर गुरु नानक जन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार, सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरियो, सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो, सच सिरजियो संसार आपिया पुल ना पुलो, रतन नाम अपार कीम न हो पवे अमलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन हूं पाए, हर गुरु नानक जन परसियो ते बौड़ फिर जो न आए, कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए, ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत न पाए, अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जन परसेओ ते इत्युत सदा मुक्ते, प्रभ दाता दातार परयो जाच के कसरना, मिले दान संतरेन जेहे लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे, देहो दर्श मन चाओ भगतेओ मन ठहरावे, बलेओ चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी, तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी, जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बड़ो अभमानी, पार तान पारे अपवाद नार निंदा यह मिठी जी माए हितानी, बल बंच शब करते पावा पेक्त संत प्रभ अंतर जामी,
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੁ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਉ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ।

बरस एक हो फिर ओ किने नौ परचो लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो, गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो। पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ, धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ। पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ, काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बर, गुर अमरदास सल पण तैं दल जितो इव जुद कर। कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै, रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा, सतगुर से परम पद पायो अब ना सी अब गाते आयो। तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया, हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे। कब कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया, तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे। कब कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया। जागया मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे। कब कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अनपौ उन्मान अकल्य लागी पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। कब कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारेओ। दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारेओ, सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने, नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो, संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै। मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै, सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै। संजम सत संतोख सीर सनहु फुटै, सतगुर प्रमाण बिदनै सिरयो जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो, जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी। सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी, आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो, प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै। सतगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुटै, मत माता संतोख पिता सरसै समायो। आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो, आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो,
जगत उधार नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाईए तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचरै तै शब्द निशान मजायो से सदा सह शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचरै तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवासै जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नासै गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवारै जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारै परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देसो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दिर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहन इस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसै तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ कर्म का किया अमरदास पल्ले कहो दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यतन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादक रुद्रादक।

नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै गुरु समर्थ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत है मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दर्त नागर संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल युग कबहो को पावै आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको शिव मुन गहे नात जात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहो लोग प्रगासे देख दर्श पटक परम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ ताहे कहा परवा कहूं की जा कै बसीस धरयो गुर हथ तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ गुर अमरदास करतार।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्स परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खे।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पाओ नारक दुनिया कैसी होई।

लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। बिरद भयो सूजै नहीं, काल पहुंचियो आ।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जेह तो कौ दियो ता स्यो नेहो नाकीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जाना।

काट काट में हर जू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दियोतर है पार। सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजह, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को।

जैसे जलते बुदबुदा उपजय बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई मद माया कै अंध, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा सरन राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहो ठगौर नानक फासी गलपरी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक निफल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत तेहीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ न हर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत। कह नानक।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्स तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र। दुतिया माल कौसकिया लापे, संग रागनी पांचौ थापे, गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौसक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौसको भारा, खौ खटियो पौरा नद गाए, अष्टमाल कौसक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी,

गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एको ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरे है कर रावण दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिआं नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुला होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी। पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुला होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदयां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासे, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

नंदन आखय ईश्वरिया कह सिद्ध आखय केते कीते बोधन आखय दान मया कह देव आखय सुर नर मुन जन सेवन केते आखय आखन पाहे केते कह कह उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख न सकहे के ई के जीवड़ पावे ते।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम हरे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख।

लिए पत होए। ऊतम से दर ऊतम कहिए नीच कर्म बहरोए रहा। रस सोयना रस रूपा कामन रस।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोई। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

धात मिलै सुन धात कौ सिफ्ती सिफ्त समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखिया हर जप एक कै पाए पाई रे।

जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भाव जल पचाए पचाए यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाए जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

सदगुरु सेवने अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर डाक्या उरतार हों तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुख।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

हर दरगाह पत खोए, हम मैं गुरमुख खोइए, नाम रत्ते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित्यासा, सदगुर सेव मोह पर जलय, कर ही माहे उदासा रहाव। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद, अहनस भगत।

गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

आप हुआ मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह चरण

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देख सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहाउ

थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हों सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड भागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग

गुर जेवड़ अवर न कोय, दूजा थाओ न को सुजै, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पाथ। गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लग गई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौं तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे, साध

करणी सार, आप छोड़ सब होए रेणा, जिस देव प्रभ निरंकार, जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवा, दो कृत सो कृत मंधे संसार सगलाना, दोहूं ते रहत भगत है।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां।

जाए, नित रवे सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

हुक्मी साच समाहे, नानक जो तिस पावै सो थियै, इन्ना जनता वस किश नाहे। श्री राग महला पहला, मन झूठै तन झूठ है, जिहवा झूठी होए, मुख झूठै झूठ बोलना, क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांजिए, साचे ते सच होए।

जान, बिन गुर कर्म न छुट सी, कह सुन आख बखान। सब गुणवंती आखी है, मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी, मैं पहावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा, ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर।

सुख को मांगे सब को दुख ना मांगे कोई सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानी है शब्द तेज सुख होए

क्यों थिर रहै सुहाग, पाई रे अवर नाही मैं थाउ, मैं तन नाम निदान है, गुर दिया बल जाओ रहाओ।

तेज पतार मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाइए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मन मुख भुलै भुलाइए फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ फुलिये देखी बहुत अभिमान। तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान, गुरबिन किन समझाइये मन राजा सुल्तान। प्रेम पदार्थ पाइये।

समाए पी अमृत संतोखिया दरगाह पैंदा जाए कट कट वाजै चुंगरी आनंदन शब्द सुपाए विरले कौसव जी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिस है तौल हर बगे बंक द्वार कर मन

अंक समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पा

जां कौ चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चहु कुंट।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन

विटों कुर्बान जियो। हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

पाठ बताया। गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा हर दिसह हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी हों।

तीर्थ वर्त सुत संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात। कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे अड़ै क्यों कर हर दर्शन पिख है।

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाउ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर बस पए मन सब सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर चाव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूझ।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाना सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बहै सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया। जो

सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया आनंद बिनोद तितै कर सोह है जो धन कंत सिंगारी जियो सागुणवंती सावड भागण पुत्रवंती सीलवंत सोहागण रूपवंत सा सुगड़ बिचखण जो धन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई परधाने सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सबराई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर ध्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिय गत नानक विरली जाति जियो माज महला पंजवा।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवां जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

तू संतन की करहे प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा।

पीखीर अगावै ज्यों निर तन तन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहु मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोकौ हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

पावै। नाम निदान तिसहै प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना, जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना। तिसहै प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक हथ आया बरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त भए कनेरे। नाम निधाना गुरमुख पाइय।

अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभु कृपा ते हर हर त्यावौ, प्रभु दया ते मंगल गावौ, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो, जिस

विचारा अनंत विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया सुमत पाए नाम त्याए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यों जल है समाया त्यों ज्योति संग जोत मिलाया कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा बहुड़ न होइय जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया वार वार जाही तिस बिटहो जो मन तन तुद अरादे जियो तिस चरण पखाली जो तेरा मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो सेवट भागी जिन तुम जाने सब कै मध्य अलिप्त निर्बाणे साध कै संग उन पौजल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण परिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दी जय नानक कौ तिस प्रभ अगम अगाधे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ शाख तेरी फूली तू सूखम होवा अस्तूली तू जल निध तू फेन बुद बुदा तुद बिन अवर न पालिए जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मध अंत प्रभ सोई अवर न कोय दिखा लिया जियो तू निर्गुण सरगुण

प्रगट प्रभ आपे। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर ने

नाम ध्याए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुर पूरै बजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मन है अधारा। भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा। हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो, मनसा धार जो करते आवे। साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूर्ण होवे। पेटत गुरदर साया जियो, अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी। साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका भोलावा। गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना। सुख सहज हर नाम बखाना, होए कृपाल स्वामी अपना। नानक नाओ नानक कर्म है आया जियो, माज महला पंजवा।

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ जिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब भौ बिनसै हर हर त्याई।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी, बहा पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

यो मन भिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हौ वारी जीओ वारी एकस स्यों चित लावणिया गुरमति मन एकत घर आया।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

जी जंत सब शरण तुम हरी, आपे धर देखहिं कच्ची पक्की सारी। अनदिन आपे कार कराए, आपे मेल मिला बनिया। तू आपे मेल है वेखहिं हदूर, सब है आप रह।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए। आन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवै जिसनों आप पियाए।

गुरमते आप बुझावणिया रहाओ। सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेव्या प्रगट होई। गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावणिया।

नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख ना संतापे हो मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणे गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणे गुरमुख

वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद बखान है मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिया शब्द सुहावै, गुरमती मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती, इह मन सच रंगावणिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया।

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभ राज।

चाहो, भूख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाहो। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान। जन्म

हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट

भिष्ट ना जाइए छुट्टै सच कमाए मारन पाहे हराम महे होए हलाल ना जाए नानक गल्ली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशै

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

तीजा। तेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया। पेव कड़े गुण समलै सहुरै वास पाया, गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससुरै पेय फिर बसै कहो कित बिद पाइय।

नाम मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाइय संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ। जो जन त्यावह हर हर नामा तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साद है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आ गए। जन नानक हर रस तृप्त।

हर नाम मन चित नित ध्यावहो जन नानक जो अंति अवसर लै छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए।

जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूड देवाने तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोह पचाने जिनको तुम दया कर मिलहो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे।

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन मोर

हर आप बजाए त्यों वाजै जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जियो,

शोभा घट घट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत

साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभिमान पहे निर्वैर आठ पहर पूजहो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर।

अंतर साच सहज घर आवहे, राजन जान परम गत पावहे, सच करनी गुर परम चुकावै, निर्भौ कै कर ताड़ी लावै, हों हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

रख रखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर्दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सह ना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या पास है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजै पत पाइयै गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाइयै अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाइयै नजर करे।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द न

नहीं रोता, आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया, पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया।

रहे गुर कै शब्द पंच संघार आप तरे सगले कुल तारे माया मो नत बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिशना फिरे अहंकारी आप न चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलहाई।

खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, होमै मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवै नाम सहज समावै।

गावै हर अलख अपेवै एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर तेजो मुह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन आन दिन बद्धे मारियन फिर वेला ना लहन हर

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन कर हला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल। सतसंगत लग हर ध्याई हर हर चले तेरे नाल। मन कर हला बड़ भागिया हर

करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट कीना सहज सुहेला।

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख डंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो।

भागै। जास जपत बस आवह पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझै, जास जपत हर दर।

मनस बेताला गैर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पश पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, विनस जाए गो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निश्चल सच थाना, तहां संगत साध गुण रसै, अन पौ नगर तहां सद वसै, तह पौ परमा सोग ना चिंता, आवन जावन मृत ना होता, तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

आऊं। जो इस मारे तिस कौ पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी,

आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवां।

हर संग रखवाला पूर्ण पुरख नवतन नितबाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

गुर पुरख बिधाते, पुरखो बिधाता एक श्री धर, क्यों मिलहै तुझे उडीनियां, कर करहै सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक।

जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत कर हो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

साध संग पतियाना दुख सुख वाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रहत

लून हरामी गुना हंगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे ना जानत तत लाहा माया कारने दहन दिस।

अखर महत्र पवन प्रभ तहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

अगयान पंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरु

अष्टपति सिम राव सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधाखेर कीने राम नाम एक आखेर।

प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला।

सन दसना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बेमुहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा अभि

अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह ब्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सोना।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

सुख मंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहें।

राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमर

अष्टपदे मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लागे आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका

धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल मह आप अनेक जुगत रथ थाप ओथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड।

जाप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है होर।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे